0: बाबु ए बाबु कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: टीकापुर नगरपालिका को ग्रामीण अल्ट्रासाउंड सेवा बारे अत्यंत जरूरी सूचना
5: टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको मिति स्थान र समयमा सञ्चालन हुने भएकाले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ
4: वडा नम्बर 1 एकता नगर कार्य समितिको भवन भदौ 7 गते
5: वडा नम्बर 1 ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र भदौ 8 गते
4: वडा नम्बर 9 ढुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 9 गते
5: वडा नम्बर 6 नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी भदौ 10 गते
4: र वडा नम्बर 7 छत्ती शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 11 गते
5: सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झलै फटाका आजी ठ का कना हो बाबा फ्यो ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुइति जलम भर भर बरैति रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झोलै फटा कै ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिक्ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो ओ त कहाँ टीकापुर म रलक रटगे यहाँ झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दिदी कटरा से गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिहरी थी ना कबु पेन्सिल हेरै थी ना झोला फाटल हुई थी कहेक आनल झोला जस काटस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबु पसल छानकन झोला नहीं आना से कठुही
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गैया झोला उद्योग में रख गैया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एक नम्बर सुनबाट निर्मित अत्याधुनिक डिजाइनका गहना पाइनुका साथै अर्डर अनुसार गहना सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ
4: न्यू अछाम जालपडेवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टिकापुर कैलाली सञ्चालक दुर्बा सुनार

0: छिछी फे चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बाक सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटा हो त
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौ कन्थे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लम्की मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 वो 98 6 56 92 026
2: एनसेल पैक किन्नु भयो त सर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे ठारू भाषक खोज खबर में यहां उक्रन स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्र पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनते रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर में विद्रोह दिवस तथा सद्भाव कार्यक्रम ओरायल इतिहास में शेषण पाठ सीखती टीकापुर के समृद्धि आवश्यक रहा जनप्रतिनिधि उकरण के कहाई आपन छावा के उपचार के लग सहयोग कर देना टीकापुर के भीम बहादुर के आग्रह ब्लड कैंसर से पीड़ित छावा के खजुरा में उपचार हुई थी। टीकापुर स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में रक्तदान 15 पिन रगत संकलन और टीकापुर शिक्षा महासंघ और पेशागत संगठन के उपस्थिति में नगर अनुदान शिक्षक खुकरण के पेशागत सुरक्षा महंगी भत्ता के बारे में छलफल। खबर 2072 साल भदौ 7 गते टीकापुरमा हुइलक हिंसात्मक घटना उसके और दिन समेत हुइलक आगजानी यही से यहां के समेत मुद्दामा श्रृंखलाबद्ध समेत रूप से इस श्रृंखला से पाठ सीखती टीकापुर के समृद्धि आवश्यक रलक जनप्रतिनिधि बटवैटियाल बाट थारू कल्याणकारी सभा क्षेत्र नंबर 1 कैलाली के आयोजना टीकापुरमा हुइलक 11 टीकापुर विद्रोह दिवस कार्यक्रममा बोल्ती ऐसी मत तैयार समय ठुल के हो। सुर पश्चिम प्रदेश सरकार के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री खुशीराम डंगौरा थारू से टीकापुर घटना के स्मरण करती निर्दोष सुरक्षाकर्मी ऊपर के शहादत ओ संविधान मा पहचान के अधिकार मांगने निहत थे थारू समुदाय के मुद्दा खेपना पर्लक दोनों अवस्था गलत रलक बटवा गिलबा वहां ढेर अधिकार प्राप्त हुईलक ओ कुछ पैना बाकी रलक ओर से आवाज बुलंद करना नहीं छोड़ना हो संघीयता के समेत संरक्षण ओ समेत एन के संघीयता के संरक्षण ओ जनपक्षीय कानून बनेना प्रतिबद्धता करलबाट पूर्व मंत्री तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा के सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरी टीकापुर घटना के कारण पाछक पर्लक टीकापुर के क्षतिपूर्ति पैना पर्ना बटोले बाट थारू बाहुल क्षेत्र में पर्याप्त बजेट नई दैके सुदूरपश्चिम प्रदेश में समेत बनलक इन लाल आयोग ढिला देना समेत चौधरी के चेतावनी देले बाट संविधान सभा सदस्य कृष्ण कुमार चौधरी थारू आंदोलन के बेला में कुछ प्रतिनिधि उक्रण जितेलक कही कि रेशमलाल चौधरी के नाटक करण नहीं होना कहल बाट थरुआत आंदोलन के अगुआ माधव थारू से राज्य के थारू ऊपर करलक दमन के आक्रोश व्यक्त हुईलक टीकापुर घटना के दिन जीत के दिन के रूप में मनाई पर्ना हो रेशमलाल चौधरी से आपन समेत बकौती और समेत निजी मामला नहीं मनना समेत बटैले बाट जानकी गांव पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी संविधान में पहचान सहित के संघीयता मंगती आंदोलन हुईती रलक बेला टीकापुर में 10 वर्ष द्वंद्व में फे समेत नई भोगलक अकल्पनीय घटना हुईलको थारू पर दोष समेत थुपारगिल बटोले बाट कैलाली के क्षेत्र नंबर 1 से प्रतिनिधि सभा सदस्य कोमल गेवाली से इतिहास मन से पाठ सिक्के भविष्य के तैयारी करे पर्ना बटोले बाट जानकी गांव पालिका की निवर्तमान उपाध्यक्ष उमा महतो थारू उकरण के हक अधिकार प्राप्त नहीं हुके हुईसम आंदोलन जारी रहना कहना संदेश देनकलक दिवस मनागिलको अपने आपन हक अधिकार प्राप्त करकलाक सबको थारू एक होना आवश्यक रहल बटोले बाट कार्यक्रम में थारू कल्याणकारिणी कैलाली जिला के पूर्व सभापति माधव चौधरी मुक्त कमैया समाज के केन्द्रीय सदस्य सीता चौधरी थारू कल्याणकारिणी केन्द्रीय पार्षद रामकृष्ण चौधरी लगायत से मंतव्य धरल रहें। थारू कल्याणकारिणी कैलाली क्षेत्र नंबर 1 के सभापति लौतन चौधरी के अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में थारू कल्याणकारिणी के उपसभापति संतराम चौधरी स्वागत करल रहें। कार्यक्रम संचालन थारू कल्याणकारिणी के जिला सचिव बुग्घराम चौधरी कर्लर हैं। यह बीचमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल हो। टीकापुर राजबन्दी परिवार से फिर टीकापुर के थारू विद्रोह दिवस और सद्भाव कार्यक्रम करलबा थरवत आन्दोलन के 11 वर्ष पुगलक अवसर में टीकापुर में करगिले कार्यक्रम हे सम्बोधन करती नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल के संरक्षक रेशम चौधरी थरवत के माग मुद्दा अबिन फे पूरा नहीं हुईलक ओ पूरा नहीं हुईसम समेत घर छोड़ना तैयार समेत रलको थारू समुदाय के मुद्दा नहीं छोड़ना बतोले बाटे। संरक्षक चौधरी से आपन बारे में समुदाय में नई मजा हल्ला फैलायल बतोईथी अपना उकरा समाज में सद्भाव चाहलो थारू पहाड़ी समुदाय बीच भेदभाव नहीं धरना बतोले बाटे। राजबंदी परिवार के किसान लाल डंगौरा के अध्यक्षता महिला कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अरूण चौधरी कृष्ण बहादुर चौधरी टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख राम बहादुर नगरजी ओस्तक नर अली जागा बीना चौधरी से शुभकामना मंतव्य धरले हैं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के केन्द्रीय सचिव ललित तम्राकार से संचालन करलक कार्यक्रम में स्वागत लालवीर चौधरी करलर हैं। यागे टीकापुर अस्पताल के बेरहमे उकरण फलफूल वितरण हो स्वर्गीय बालक टेक बहादुर साउट के शालिक में मल्यार्पण करगिल बा। खोजखर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पाच फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: लो इतनी छिटो आमा बन लग तो अवस्था में घर में सक न सक सब काम कर अपनी काम करने विदेश जानु के नगर्नी के झालमा जस्ते
2: जस्तो राम्रो पढ़ने मेरे साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुबे अन्योलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर। भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु मुटुको ढड़कन कम वा हुनु लामो समयदेखि टाउको दुख्नु छटपटी लाग्नु जिउ झमझम हुनु जलन हुनु चिन्ता मान्नु जीवनसित निराश हुनु आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु धेरै शंका मान्नु कानमा बोले जस्तो लाग्नु कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु काममा मन नलाग्नु झर्को मान्नु रिसाउनु बिना कारण हाँस्नु मुस्कुराउनु रुनु घर छोडेर भाग्नु यौन इच्छाको कमी हुनु जाँड गाँजा चरेस रक्सी ब्राउन सुगर नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको नजिकै टीकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-650-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
0: विश्राम पास फिर से स्वागत बा। विश्व बन्धुत्व दिवसको समेत राजयोगिनी दादी प्रकाश मणिके 19 पुण्यतिथिमा समेत रक्तदान कार्यक्रम करगिलवा टीकापुरमा ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आयोजनामा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा 15 पीठ रगत संकलन हुलवा कैलाल के जोशीपुर के जंजीर प्रसाद चौधरी अपसम विशौ पटक रक्तदान करलबाट एक थोप रगत सेफे समेत महत्व हुइट कहना बुजलक चौधरी नियमित रगत दान समेत करतीरलक बटोले बाट इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर के शाखा अधिकृत शर्मनन्द चपाई मानव जीवन बचाइन क्लाक रक्तदान महादान समेत हुइला कोर्सी इहे प्रोत्साहन करे पर्ना बटोले बाट टीकापुर नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावल से अस्पताल मा समेत दुर्घटनामा शल्यक्रिया गर्न पर्न सिक्लेस के बिरामी उक्रन एचआईभी संक्रमित रक्त अल्पत्ता रलक ओ सुत्केरी उक्रन रगत आवश्यक पर्न रलक ओर्से रक्तदान भारीदान हुई बटोले बाटे उहाँके शरीरमा समेत खरबासे जैन रगत औरके जीवन बचाइन काममा 18 वर्ष उपरक हुक्रन के निरोगी मनाइन हुक्रन के दान गरे पर्न बटोले बाटे टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगरजी रगत अभाव से समेत ढेर ज्यान जाइसक्न रलक ओर्से रक्तदानमा समेत असिन संस्था समेत व्यक्ति हुक्रन सहयोग गर्ती रलक बटोले बाटे ब्रह्मकुमारी सीता तिमिलसेना से समेत राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि के सम्झनामा देशभर रक्तदान कार्यक्रम आयोजना करल बटोले बाटे ब्रह्मकुमारी के नेपाल समेत भारतमा रलक सक्कु शाखामा आके पटकमा भदौ 5 गते से 9 गते सम्म रक्तदान कार्यक्रम होइतिरहलबा सोमबार के दुर्गौलीमा फेर रक्तदान कार्यक्रम करगिलबा टीकापुर के भीम बहादुर चौधरी अपन छाव के उपचार के लाख सहयोग कर देना आग्रह करलबाट टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 शिवनगर के भीम बहादुर चौधरी आपन 2 वर्ष के छावा हिमेश से ब्लड कैंसर हुईलक उपचार के लक समेत आग्रह करले बाटे शिवनगर शिविर में बैठी ऐलक भीम बहादुर के घर में आर्थिक अवस्था कमजोर रलक ओर से छावा के उपचार में सहयोग करना सरकार और सरकार वाला हुकरन फे आग्रह करले बाटे कैंसर पीड़ित हिमेश अब सुशील कोईराला प्रखर कैंसर अस्पताल खजुरा बांकेमा उपचार करते बाटे हिमेश के उपचार के लाख ढेर पैसा लगना कलक ओर से वाड़ा कार्यालय के सिफारिश लैके भीम बहादुर के परिवार आब्बा हिमेश बचाओ अभियान में जुटल बाटे हिमेश के समेत हजुर बुआ समेत ओ फे समेत बाबा फे उपचार के लाख खोजी में पैसा के जुगाड़ में बाटे बुडू लठी टेक के फे नतीओ के उपचार में सहयोग कर देना अनुरोध करती गांव गांव समेत जैती बाटे टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 स्थित जीतू कटेज के भन्सामा आगलागी हुइलबा आगलागी से सामान्य क्षति हुइलक बताइलबा खाना पकाइना बेला दुपहर के 3 बजे ओर आगलागी हुइलक होटल संचालक जीतराम चौधरी बटुले बाटे आगी लगल लगते स्थानीय बासिन्दा हो प्रहरी के सहयोगमा आगी नियन्त्रणमा लेहल बताइलबा विश्राम पाछ फेर सेबी सुन्तिरबी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
6: टीकापुर नगरपालिकाको ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
7: टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको मिति स्थान र समयमा सञ्चालन हुने भएकाले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ
6: वडा नम्बर 1 एकता नगर कार्य समितिको भवन भदौ 7 गते
7: वडा नम्बर 1 ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र भदौ 8 गते
6: वडा नम्बर 9 ढुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 9 गते
7: वडा नम्बर 6 नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी भदौ 10 गते
6: र वडा नम्बर 7 छत्ती शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 11 गते
7: सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि
6: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली
8: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
9: मैं नहीं जाऊं
8: उहाँ आफ्नो अनुहार बिगर्थे घर से बाहर नै निकर्छु।
9: उहे मारे तो तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
8: ए हो दादू अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
0: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपार के तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
10: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। हाल देशभर मानसूनी वायु के प्रभाव रहल बा। मानसून की न्यूनचाप रेखा सरदर स्थान के आसपास रहलक जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनायल बा। महाशाखा के अनुसार अब देशभर साधारणतया मौसम बदलती बाकलसे बागमती गंडकी समेत प्रदेश के कुछ स्थान कोसी कर्णाली और पश्चिम के कम स्थान और मध्य प्रदेश में एक दो स्थान में हल्का मध्यम वर्षा होती रहल बा। आज दोपहर के देशभर साधारणतया मौसम बदलना बाकलसे हिमालय भूभाग के कुछ स्थान में मेघगर्जन और चट्याङ सहित मध्यम वर्षा तथा हिमपात के संभावना बा। पहाड़ी भाग में ढेर स्थान में मेघगर्जन और चट्याङ सहित मध्यम वर्षा होना संभावना रहल मौसम बुलेटिन में उल्लेख करल बा। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण थापा मगर के पक्ष में विश्वास के मत देना हुईलबा। नेकपा के मुख्यमंत्री थापा के पक्ष में विश्वास के मत देना आपन प्रदेश सभा सदस्य उकरण हुई जारी कर सकल बा। काली सोमवार के समेत विश्वास के मत लेना तैयारी हुई थी। तलक में मुख्यमंत्री थापा के पक्ष में मतदान कर नेकपा से आपन प्रदेश सभा सदस्य उकरण हुई जारी करल के हो। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुर में थारू विद्रोह दिवस तथा सर्वभाव कार्यक्रम ओराइल इतिहास से पाठ सीखती टीकापुर के समृद्धि आवश्यक रहल जनप्रतिनिधि हुकरन के कहा। आपन छावा के उपचार के लक्ष्य सहयोग कर देना टीकापुर के भीम बहादुर के आग्रह ब्लड कैंसर पीड़ित छावा के खजुरामा उपचार की। टीकापुर स्थित ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के रक्तदान पंडपीत रगत संकलन। रीता बकलक थारू भाषा खोज खबर अत्रै औरा समाचार 12 बजे नेपाली भाषा में खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनतिर विराम राम।

0: किन्लिटे सर लागू हुई एनसेल नेपाल के लग।
1: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
2: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
2: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाड खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: बुका पिएरै ठक बु पेन्सिलेरै ठक बु झलै फटाका आजि ठक का कना हो बाबा फि ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झला आनले से त लड़का सामान निहेरे
1: ओहो इ बुढा लिखबे का हुई टीज जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठक बु पेन्सिल हेरा कै ठक बु झलै फटाका ठ बढ़िया ठाउँ से झला लान नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लन बो ओटा का हो टीकापुर म रलक रडगिया झला उडोक म से वहा झिंगरान दिदी कत्रा सुगर झला आनला बाटी ना कबु लड़का का पिएरी ना कबु पेन्सिल रहिथिन ना झोला फाटल हुइथिन कहियक आनल झोला दस काटस बाटिन ई बुढक ढंग कबु पसल छानकन झोला नि आन स्याक ठुही
1: ल्याल्या मैं अब दिन जइबु रगैया झोला उद्योग में रगैया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरूमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्नुपर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय पत्र नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित लाभग्राही स्वयं तपसिल बमोजिमको नवीकरण शिविरमा उपस्थित भई भत्ता नवीकरण गर्न गराउन हुन अनुरोध छ।
4: शिविर सञ्चालन हुने स्थान
3: वडा नम्बर 8 को कार्यालय भदौ 7 देखि 9 गते सम्म
4: र वडा नम्बर 9 को कार्यालय भदौ 10 देखि 11 गते सम्म
3: सबै वडाहरूमा शिविर सञ्चालन हुने समय बिहान 8 बजे देखि साँझ 5 बजे सम्म
5: याद गर्नुहोस् 60 वर्ष उमेर नपुगेका विधवा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले अर्को विवाह नगरेको सिफारिस र अपाङ्गता भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको हकमा अपाङ्गता परिचय पत्र अनिवार्य साथमा लिई आउनु पर्नेछ।
3: थप जानकारीको लागि टीकापुर नगरपालिका र सम्बन्धित वडा कार्यालय सम्पर्क नम्बर 98485-01888 98485-01556 र 98486-13434
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

0: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली टिकापुरमा।
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
0: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
1: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
0: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
0: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
1: ईसीजी सेवा,
0: डिजिटल एक्सरे सेवा
1: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
0: फोन नम्बर 9844-27359 र 9848-42-73-59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
2: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वा नन्दिक भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
3: अजी गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएको आन्छे कि कत्रा सुगर बनाएको अन्ल बाटी
3: ए ले ले ठिक बा चल हाली भात वात खाइ आऊ जाइका हौ सामुएल ज्वेलर्स न गर गहना बनाइ सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टिकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864-41-208 और 9846-39-261।

0: से कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आज का कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बरती रहा
0: का हुई कब्बू लड़का कभी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनला बाटी ना कब्बू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कब्बू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

कदम कदम साथ चल दियो न बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रम जोड़ लिया अपने उकनगला कार्यक्रम में बाटो में मिशन में के साथ धेरै बाबू रत्नपुर मगर और यो रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज में बसंती बाटे विशेष करके हो कार्यक्रम निशाना निशाना में विशेष करके निशाना लगाना हो तो अपने के हमारे कार्यक्रम में सहभागी जने भी 091-5-61-255 अर्थात 091-5-61-255 लाइन एकदम खुला भाग नाम टोकन जानकारी करते बारो तो कार्यक्रम में चाहे आईवी काल से जनौनी कहकूट दिमाग खियाईना प्रश्न थारण के अल्लाह की दस्तावेज नासवान पुरखौली हुकरन की शीर संपत्ति झलकना मेरा एक प्रश्न अपने हुए लैके आईवी का नाम टोकन जानकारी करम और अपने हुकन के संगे संगे हमारे चाहे रमाइलो गप करब और अपने संगे बातचीत बताब और प्रश्न कहम ओकर चाहिँ जवाब अपने हुकन देहक पर्ना रही कना मैं अपन जानकारी करती बारू तो फटाफट चाहिँ डाल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनैते कर भी अपने विशेष करके कार्यक्रम में चाहिँ आईवी काले से जस्ता मैं फेन कौन कम निशाना लगाई से कम कना सोच बना के कार्यक्रम में आईवी का नाम अपन जानकारी करना चाहम करीब करीब 1:45 बजेसम चाहिँ यात्रा कर भी पहिलो जन्मी त दोस्रो दोस्रो जन्मी त तेस्रो तीन ठो प्रश्नको जवाब जन्मी त कार्यक्रमको विनर हुबी आयो तीन ठो प्रश्नको जवाब जन्मी त गोला पर्दा से एकजना नामले विजेता घोषणा गर्थ्यो विजेता है 100 रुपियाँ के रिचार्ज कार्डमा आफ्नो भन्नु चाहिँ यहाँ से ट्रान्सफर चाहिँ करेक्ट परठ हमारे यहाँ टीकापुर एफएम से कहीं मैं आप लोग जानकारी करती बार तो संगे मौसम सुहाना बा पलघरी रमाइलो बा जहां हुई सफेन कार्यक्रम चाहिए अब अल्छी के बेला बा अपने के रेडियो सुन टीवी व्यापार व्यवसाय के बावजूद वस्ते के अपने के यात्रा में हुई भी या अपने घर में हुई भी जहां हुई भी तो कार्यक्रम के सहभागी जने भी कना मैं आप लोग निवेदन करम और विशेष करके अक्सुटी ये अलछी समय है कुसा सम दूर करा के कार्यक्रम में सहभागी जने भी कना मैं आप लोग निवेदन करता हूँ तो फटाफट कहीं डाल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जने दे कर भी ठीक ठाक होगी जोड़ गिर के पास मैं नहीं बांटू डाल करते कर भी 091-5-61-255 लाइन खुलेगा

बिल्कुलै रमाइलो भिजुअल, एकदमै मन परल गीत रहे आफ्नो गाउँले केशव और मनीषा पोखरेल की आवाज में रमाइलो गीत आफ्नो गाउँको लागि जोडली आफ्नो गाउँको संगे बाटोमै और मेका बेसा देते बाबु रत्नापुर मगर और यो रेडियो टीकापुर एफएम 101.5 जस्तो कि हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टीकापुर एफएम एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत फेप्नु क्यामन सुने सक ठिकानामा आफ्नो जानकारी गति बाटो जे जहाँ हुई भी खेत में बारी में दुकान में मकान में काम में धंदा में बिजी में बिपटाल में यात्रा में जहां रहे से कार्यक्रम में सहभागी जनाई दिया कुछ नहीं हिचकिचाके कार्यक्रम में निशाना लगाएगी सोच टीवीमै कार्यक्रममा कल करम तो सायद मै निशाना नै लगाइसकम कि सोच टीवी मन में आत्मा बोध हुई कि मै कार्यक्रममा कल करम तो सायद मै मतलब प्रश्न के जवाब नै दिए जानम कि मै लाज लागी कि सोच टीवी वैसिन बिल्कुलै ना सोचली बिल्कुलै मै फेन कोन काम मै फेन कार्यक्रममा सहभागी जनाइसकम मै फेन कार्यक्रममा आइसकम कन सोच बनाके आदेवी अक्कचोटी नै हिचकिचैबी कलेज से जरूर फेन कार्यक्रममा सफल हुई तब फटाफट चाहिँ डाल गर्बी कार्यक्रममा कसोटी मनमा आत्मबोध नै लैके कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी जनाइबी कन मै आफूको निवेदन गरम यी दुपहरिक समय हो दुपहरिक समय अल्छी समय है कुशलसम रमाइलो कार्यक्रम यी कार्यक्रममा चाहिँ आफ्नो घर हाम्रो रमाइलो गप्री कन मै आफूको जानकारी गति बाटू तो फटाफट चाहिँ डायल करते करबी 091-5-61-255 करीब करीब 1:45 बजे सम यात्रा करबी कल से अपने कर हमार रमाइलो गप हुई 091-5-61-255 लाइन खुले बा फैंस एंजॉय का एक ठाव गीत से गीत के पास रहने बारू डायल करते करबी 091-5-61-255 लाइन खुले बा

तु घाम बनो मई शीत बनम, तु बोली बनो मई गीत बनम। बिल्कुल रमाइलो गीत रहे, संगीता चौधरी और राम कुमार कठरे के आवाज में जोली रमाइलो गीत अपने होकर निकल। और कार्यक्रम में बाटो मई मिशन भरकर रेडियो खरल विकर सी हो रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज मा आईबी का लिस्ते अपने घाम डायल करे पड़ी 0915 61 255 के लाइन एकदम खुला बा, फटाफट डायल करी और कार्यक्रम में सहभागी जनाई। तो अब कसरी नै हिचकिचा कि आइबी मैफेन कोन काम मैफेन कार्यक्रममा सहभागी जनाइ सिकम कर्न सोच बना कि कार्यक्रममा आइबीका नाम आइप्रोगन जानकारी कार्तिवार त फटाफट चाहिँ डायल गर्दी कार्यक्रममा 0915 61 255 अर्थात 0915 61 255 लाइन एकदमै हाम्रो आफ्नो कार्यक्रमलाई खुल्ला गैले बाटी। तो अपने हुकन संगे रमाइलो गप करे लगे, मौसम सुहाना बा, पल घड़ी रमाइलो बा, शीतल शीतल मौसम बा, अपने हुकन संगे गप करना एकदम मन लागल बा। तो अपने चाहिए हमन कल करे पड़ना रही आज के दिन, और विशेष करके प्रश्न के जवाब निशाना लगाए पड़ना बा। तो निशाना लगाए लगे अपने हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनाई 0915 61 255। कल कर भी विशेष करके कल कर भी कार्यक्रम में चाहे मिस कल नहीं कले कर भी कल करके जादे भी बाटे बटा के जादे भी कहना मैं आप लोग आज ही करना चाहूँ। तो डायल करते कर भी एक पचुट नहीं हिचकिचा के कार्यक्रम आईटे कर भी कार्यक्रम में फैन से एंजॉय कर बे ठारू गीत से गीत के पास समय नहीं बाटू डायल करते कर भी 0915 61 255 के लाइन खुला बा।

0: सोलह सिंगारे हो सजन लानी दे हो चुरिया कंगना हो बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रम में जोली अपने कन के अब अठी बजे समीक्षा चौधरी के आवाज में रहे कार्यक्रम में रमाइलो गीत ठीक है। व्यापारिक विषय में जाए व्यापारिक विषय के पास में कंपनी जेबी तस्तम एक एक साथ कमर्शियल ब्रेक ब्रेक के पास में आईने बाटो
1: छिटो आमा बन लाग तो अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकि सबै काम गर्नुपर्छ कस्तो गाह्रो हुन्छ पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन म त जन्म परे जस्तै लाग्छ त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
2: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झनै फटाका आजिठ काकना हो काकना हो बाबा फ्यो ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से त लड़का सामान निहरत
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुई थी जरम भर भर बरैती रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कैठ कबु पेन्सिल हेरा कैठ कबु झोलै फटा कैठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो त कहाँ टीकापुर म रलक रटगे यहाँ झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दिदी कटरास गोर झोला आनल बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिहरी थी ना कबू पेन्सिल रहीन ना झोला फाटल हुईन कैक आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना सिया कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: कैश पिता ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी तो 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश पिता ले लीते कैश पिता ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
5: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूवी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
6: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
4: डेलिभरीका लागि
6: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
4: टीकापुर कैलाली
7: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870101672 स्वास्थ्यका लागि पानी
8: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रडगैया झोला उद्योगमा विभिन्न डिजाइनका झोला सुगठ मूल्यमा पाइन्छन् जस्तै स्कूल ब्याग क्यारिङ ब्याग लगेज ब्याग फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न डिजाइनका ब्याग अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मरमत गरिन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला
9: रडगैया झोला उद्योग मुनुवा रोड टीकापुर कैलाली संचालक रामप्रसाद चौधरी
10: फिर्ता फिर्ता 20% सम्म क्यास फिर्ता जहिले पनि जहाँ पनि
11: क्यास फिर्ता लिनु भए त
12: एनसेल प्याक किन्नु भए त
13: जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्
12: एनसेल प्याक किन्नुभयो त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि
14: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी?
1: आमा, मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न, लाउन कस्तो रहर लाग्छ।
0: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
1: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त, पछि पनि काम लाउन सक्यो नि।
0: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
1: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
2: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टिकापुर। न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गर गहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसनका गर गहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगल सैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98688147979, 98247625। अछाम मंगल सैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98247628825।
3: भजनी में स्वास्थ्य शिविर हुईना बारे के सूचना।
4: भजनी नगर पालिका के समन्वय नवजीवन सेवा संघ धनगढ़ी कैलाली के आयोजना ओ सौभाग्य अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर धनगढ़ी के विशेषज्ञ डाक्टर हुकरन से निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर हुईना हुईले कोर से स्वास्थ्य सेवा लेना चाहना महानुभाव हुकरे टोकल मिटी समय ओ स्थान में उपस्थित हु के मौका के फायदा ले सकबी।
3: शिविर में पैना विशेषज्ञ सेवा हुकर,
4: स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा,
3: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा,
4: जनरल फिजिसियन सेवा,
3: जनरल सर्जरी सेवा।
4: शिविर होइना मिटी 2083 भाद्र 7 गते आइतबार।
3: स्थान महुन्याल बाबी भजनी कैलाली।
4: समय बिहान के 9 बजे से 4 बजे सम्म।
3: भजनी नगर पालिका, नगर कार्यपालिका के कार्यालय भजनी कैलाली।

0: छिछी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 ओ 98 6 56 92 026
2: लैंगिक हिंसा प्रभावित गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवा का लागि टीकापुर अस्पताल में रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकारी गरौं।
3: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
4: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
3: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
4: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
5: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98584 89213 इमेल ocmcticapur@gmail.com।

0: बुकापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटा का आज का कना हो बाबा के उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई है झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरास बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई है झोला उद्योग में रट गई है झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: सबै बिरामी आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदा हुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसक्यो कसो कालले छिटो नलाग्यो
4: होइन चाइनाजो माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेको छ के भएको छ तलाई
3: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसके छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भन्यो म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लागे हुन्छ खानै सक्दैन
4: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
5: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
6: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर ठकराला रोड टिकापुर कैलाली

0: भजनी में स्वास्थ्य शिविर हुईना बारे के सूचना।
1: भजनी नगर पालिका के समन्वय नवजीवन सेवा संघ धनगढ़ी कैलाली के आयोजना ओ सौभाग्य अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर धनगढ़ी के विशेषज्ञ डाक्टर हुकरन से निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर हुईना हुईले कोर्स से स्वास्थ्य सेवा लेना चाहना महानुभाव हुकरे टोकल मिटी समय ओ स्थान में उपस्थित हु के मौका के फायदा ले सकती।
0: शिविर में पैना विशेषज्ञ सेवा हुकरा
1: स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा,
0: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा,
1: जनरल फिजिशियन सेवा,
0: जनरल सर्जरी सेवा।
1: शिविर महीना मिति 2083 भाद्र 7 गते आइतबार।
0: स्थान महुन्याल बाबी भजनी कैलाली।
1: समय बिहान के 9 बजे से 4 बजे सम।
0: भजनी नगर पालिका नगर कार्यपालिका के कार्यालय भजनी कैलाली।
2: ८० प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
3: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
4: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
2: डेलिभरीका लागि
4: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
2: टिकापुर कैलाली
5: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772।
6: स्वास्थ्यका लागि पानी
7: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाई वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: हेरा में दिन रात गरी मरी मरी पैसा कमायो तर की गर्नु यो भर नभएको जिंदगी कति बेला की आपत आई पर्छ थाहै हुँदैन सोच्दै नसोचेको घटना हुन्छ कि बिरामी परिन्छ अनि सबै पैसा स्वाहा
5: हो नि बिरे मलाई नि त्यस्तै पर्यो नि हेर्न अस्ति अचानक बुढीलाई एपेन्डिसाइटिस भएर रातारात अस्पताल लगेर इमर्जेन्सीमा उपचार गर्नु पर्यो यसो केही इलम गरौंला भनेर राखेको पैसा सबै सकियो नि हेर्न
6: यो रामे र बिरेको कुरो सुन्दा नि मलाई त अचम्मै लाग्छ क्या यस्तै आपतको समयमा अस्पतालमा इमर्जेन्सी हुने खर्चहरू बिहोरिदिने सन लाइफको सन मेडिकेयर बिमा सुविधा लिएका थिएनौ र तिमीहरूले
5: के गर्छ र सन मेडिकेयरले
6: सन मेडिकेयरले सड़क दुर्घटना एपेन्डिसाइटिस पेनक्रियाटाइटिस हृदय घात मस्तिष्क घात विद्युतीय वा अन्य जलन डुबान विषक्तता जस्ता 15 दुर्घटना र रोगहरूका लागि आपतकालीन अस्पताल खर्चमा क्षतिपूर्ति दिन्छ त्यो पनि एकदमै थोरै लगानीमा
5: यति गरेपछि धेरै राहत हुने रहेछ त
6: हो कान्छा अपर्जट आउने आपतमा राहत भनेकै सन मेडिकेयर कुरा बुझ्यो होइन त तिमीहरूले
5: चिया पनि खाइयो कुरो पनि बुझ्यो है केटा

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटा का आज इठा का कना हो बाबा के उस तबातीन गटीलो ठाउं से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभू लड़का कभी हेरा कही था, कभू पेंसिल हेरा कही था, कभू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक थो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: खाता ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

0: फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 3 0 0
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लंबी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 3 0 0 98 6 56 92 0 26

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सञ्जेत 5 बजे थारूभाषा खोज खबरमा अपनौकन स्वागत बा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइनमा www.tikapurfm.org मोबाइल एप सा हाम्रो पात्रो ओ नेपाली पात्रो मफे सुन्दिरहल बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से कैलाशेश्वर शिव मन्दिरमा 121 लघु रुद्राभिषेक साधक के मनोकामना पूरा हुना विश्वास। भूगोल ओ आवश्यकता के आधारमा योजना छनौट गर्ना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ओम विक्रम भट्टकी कहाई। छाउगोट नै भट्केना नेता कार्यकर्ता चुनाव लड नै पैना जिम्मेवारी से हटा दिना रासपा कैलालीकै निर्णय। टीकापुर स्थित कैलाशेश्वर शिव मन्दिरमा 181 लघु रुद्राभिषेक कैगिल्वा शिव पुराण ओ वैदिक विधि अनुसार विशेष फलदायी मान्जिना हुइला कोहर्से पूर्णता स्थिरता ओ शिव कृपा प्राप्ति के लाग 11 जना पण्डित के सहयोगमा रुद्राभिषेक करगिलक हो। नेपाल ब्राह्मण समाज नेपाल कैलाली के आयोजना मन साधक के मनोकामना पूर्ति पाप मोचन ओ जीवनमा शान्ति समृद्धि लन्ना विश्वास के संग हरेक वर्ष देशभरकै शिवालय मन रुद्राभिषेक कार्यक्रम गर्नकै जेठ। नेपाल ब्राह्मण समाज नेपाल टीकापुर के अध्यक्ष डम्मर उपाध्याय रिमाल लोक कल्याण के लगभग शिवालयमा लघु रुद्राभिषेक 121 चोकरगिलक बटुलबाट शिव पुराण अनुसार रुद्राभिषेक करबेर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुइना हुइला कुहर्से 121 चोके जाप ओ अभिषेक से साधक न दीर्घायु आरोग्य ऋण मोचक ओ मोच सम्म के मार्ग प्रशस्त करना विश्वास के संग दीर्घकालीन शान्ति ओ स्थिरता के ला कार्यक्रम करगिलक उहाँ बटुलबाट लघु रुद्राभिषेक करलसे मानिन मन शान्ति आरोग्य ओ दीर्घायु समृद्धि पाप मोचन ओ मोच मार्ग अर्थात शिव कृपा से साधक आध्यात्मिक उन्नति ओ मोच के मार्ग खुन्ना उहाँ के कहाइबा। हरेक वर्ष सावन मन कर्जगिना रुद्राभिषेक यह वर्ष मलमास के कारण ढिला करगिलक हो। धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाब से महत्वपूर्ण मानगिलक शिव मन्दिर के मुख्य मन्दिर निर्माण हुइटी रहलबा। पुरान मन्दिर जीर्ण हुइला कुहर्से करोडौ लागत मन लौ मन्दिर निर्माण कार्य शुरू हुइला कुहर्से मन्दिर निर्माण तथा विकास मन सक्कु जसे करपना ब्राह्मण समाज के केन्द्रीय प्रतिनिधि धनराज उपाध्याय बटिलबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ओम विक्रम भट्ट सरल से भूगोल ओ आवश्यकता के आधारमा योजना छनौट गर्न बटुलबाट नवनियुक्त मन्त्री भाट सोमबार पदभार ग्रहण पाछा बोल्टी योजना छनौट गरबेर प्राथमिकता के आधारमा कर्ना बटुलबाट वहाँ हमार प्रदेश मन तराई पहाड़ ओ हिमाली भूगोलबा योजना छनौट गरबेर भूगोल जनसंख्या आवश्यकता ओ प्राथमिकता के आधारमा आग बढ़नाकै छलफल गरेका आग बढ़ना सोच बनैलक बटुलबाट वस्तकन वहाँ सुशासन ओ पारदर्शिता के पक्षमन काम करना कैकन आग बढ़ना बटुलबाट वहां सुशासन ओ पारदर्शिता के क्षेत्र में आगक सरकार से फिर मजा करना प्रयत्न रहलक बटुलबाट पूर्ण रूप में नियंत्रण करबी कैकन उहाँ बटुलबाट वहां आप बजेट निर्माण में द्रुत गति मन जुटना फे बटुलबाट कमटी मन जनता न संदेश देना कैकन काम करना बटुटी वहां कल हमन से सीमित स्रोत साधन बा ऊ स्रोत साधन के सही सदुपयोग करकन जत्रा काम फेकर सेगजाइट वाकर पर्यटन मन बाटे पदभार ग्रहण करती मन्त्री भाट तीन ठो महत्वपूर्ण निर्णय समेत करलबाट सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण के लाग विभिन्न स्थानमा ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन तथा गोदावरी अतरिया त्रिनगर गड्ढा चौकी लगायत के ठाउँमा एएनपीआर क्यामरा धरना वर्षौंथे सियाल पत्र रहलक ठेक्का के एक महीना भीतर अध्ययन करकन काम करना हान काम में लगैना व काम निकना के ठेक्का रद्द करना निर्णय करलबाट वस्तकन प्रदेश सरकार हन 20 मेगावाट से तरके आयोजना के लाख अधिकार हुईले से फे एन न्यूहिबेर समस्या हुईले कुंवर से एन निर्माण के सैद्धांतिक सहमति के लाख कानून मंत्रालय में पठैना निर्णय कै गिल्बा। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछै निनीबाटी सुन्ति रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरमहेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमहे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 0915600595 ओ मोबाइल नंबर 9848423759।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। बलात्कार तथा बलात्कार पाछ हत्या बिना घटनामा दोषी कड़ा कार्यवाही गर्न पर्ना वो विद्यमान कानून व्यवस्था संशोधन गर्न पर्ना माग गर्दै धनगढ़ीमा दबाव रैली निकालिदिल्बा। महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल आयोजन कैलालीको आयोजनामा हुइलक रयालीमा न अधिकार कर्मी महिला अधिकार कर्मी विभिन्न सामाजिक संस्था तथा सरोकारवाला हुकनके सहभागिता रह। कैलाली बहुमुखी क्याम्पस जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म निकारकी लग रयालीमा सहभागी हुक र बलात्कार तथा महिला उप हुना हिंसा विरूद्ध आवाज उठैल रह। रयाली पाछ सञ्जाल कानून न्याय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय व जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा ध्यान आकर्षण पत्र तथा ज्ञापन पत्र पुछैलबा। सञ्जाल विशेष कैकन 12 बलात्कार पाछ हत्या कर्गिल गरिमा चौधरी के घटना के निष्पक्ष व प्रभावकारी अनुसन्धान कर्क दोषी पहिचान तथा कानून बमोजिम कड़ा कार्यवाही गर माग कर्लबा। घटनामा संलग्न आरोपी ठन राजनीतिक प्रशासनिक वा सामाजिक संरक्षण नै दिए वो अनुसन्धानमा कोनो प्रकारके दबाव वा प्रभाव पर नै दिए फे आग्रह करगिलबा। बलात्कार विरूद्धके विद्यमान कानूनी व्यवस्थाके पुनरावलोकन कैकन घटनाके प्रकृति व उमेर अनुसार फरक फरक सजायके व्यवस्था हुइपना माग करगिलबा। बलात्कार पाछ हत्या गर्न दोषी कड़ा सजाय सहित आजीवन कारावास के व्यवस्था गर्पना तथा नाबालिका वा बालिका उपर हुना यौन हिंसा के पीड़ित न राज्य से संरक्षण मनोसामाजिक सहयोग शिक्षा जीविकोपार्जन व सामाजिक पुनः एकीकरण के व्यवस्था करपना माग कैगिलबा। सञ्जाल स्थानीय तह के टोल टोल से बलात्कार विरूद्ध अभियान संचालन कर महिला हन दोषी देखैना हानिकारक सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्परा के अन्त्य कर व सकारात्मक पुरूष तो के अवधारणा प्रवर्धन कना कार्यक्रम संचालन कर फे दबाव दिलबा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै मन्त्री परिषद पुनर्गठनकी लागि सिफारिश सिल्वा नेपालकै संविधानकै धारा 168 के उपधारा 9 बमोजिम गठित तथा पुनर्गठित मौजदा मन्त्री परिषदकै कार्य विभाजन सहित मन्त्री परिषद पुनर्गठनकी लागि मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्य प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिश गर्नुभयो। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले 3 ठो लौ मन्त्री नियुक्त गर्न मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर सिफारिशकै गिल्बा लौ नियुक्त हुइलक दिपेन्द्र कुमार पुनहन स्वास्थ्य मन्त्रालय इन्द्रजीत थारू हुन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ओ कृष्ण कुष्मा थारू हुन कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव गर्गिल्बा लौ नियुक्त हुइलक मन्त्री हुकनके पद तथा गोपनीयताके सर शपथ ग्रहण प्रदेश प्रमुखके कार्यालय बुतुलमा मंगलबार दिनका 3:25 मन ढैगिल्बा मन्त्री परिषदके अन्य सदस्य मन तुलसी प्रसाद चौधरी हन वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय रामजी प्रसाद घिमिरे हन सामाजिक विकास मन्त्रालय सन्तोष कुमार पाण्डे हन शहरी विकास ऊर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय रत्नबहादुर खत्री हन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भण्डारीलाल अहिर हन आन्तरिक मामिला कानून उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयकै जिम्मेवारी देना सिफारिशकै गिल्बा यसै आग स्वास्थ्य मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा रहलक रामजी प्रसाद घिमिरे हन सामाजिक विकास मन्त्रालयकै जिम्मेवारी देगिल्बा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा रहलक तुलसी प्रसाद चौधरी हन वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयकै जिम्मेवारी तोकिल्बा उस्तक सामाजिक विकास मन्त्रालयकै जिम्मेवारी सम्हाल्ती ऐलक सन्तोष कुमार पाण्डे हन शहरी विकास ऊर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयकै जिम्मेवारी प्रस्ताव गर्गिल्बा वर्तमान सरकारमा नेकपा एमालेसे मुख्यमन्त्री सहित 4 जना नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपासे 3 जना ओ जनता समाजवादी पार्टी नेपालसे 2 जना मन्त्री रहनाकै हुइलक सहमति अनुसार मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर लागिलक हो। खोज खबरमा फेरफेर विश्राम विश्राम पाछै नै बाटी सुन्ति रहे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
4: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल
5: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
4: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए
6: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ओम विक्रम भाट सरलसे मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित बहुवर्षीय ठेक्काकी व्यवस्था अध्ययन गर समिति गठन गरलबाट सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री भाट 3 ठो निर्णय मन हस्ताक्षर गर्नुभयो। मन्त्रालयकै प्रादेशिक सड़क तथा यातायात व्यवस्था महाशाखाकै प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रामचन्द्र खत्रीकै समयजक्तोमा समिति गठित समितिमा मन्त्रालयकै सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख र सदस्यबाट समिति बहुवर्षीय ठेक्काकै अध्ययन गर्क 1 महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाइ समय देगिल्बा समितिकै प्रतिवेदनकै आधारमा लम्बा समय थिएसे काम आग बढ़ निषेकलक बहुवर्षीय ठेक्का बारे आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्री भाट बटुलबाट वर्षौं थिएसे ठेक्का अलपत्र हुइबे नागरिक शास्ति भाग पलक उल्लेखी उहाँ सम्बन्धित निर्माण व्यवसाय काम मन फर्कैना वो काम आघ नै बढ़ैना ठेक्का रद्द गर्न चेतावनी देलबाट बागमती प्रदेशकै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरकै नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत पाटन हेटौडा इजलास कारण देखाउ आदेश जारी गर्नबा न्यायाधीश बबिता उप्रेतीकै इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिकै निर्णय काकर बडर निकर्ना हो वाकर आधार प्रमाण सहित 15 दिन भित्र लिखित जवाब पेश गर आदेश देगिलबा। मुख्यमन्त्री थापा मकर के नियुक्ति प्रक्रिया संविधान के भावना विपरीत रहलक दावी करती अधिवक्ता मोहन प्रसाद ढकालो राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी रा परपा के बागमती प्रदेश संसदीय दल के प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङ भदौ पाँच गते अलग अलग उत्प्रेषण रिट दायर गर्न रह। राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी कैलाली जिल्ला समिति छाउपडी विरूद्ध कड़ा निर्णय करलबा। पार्टी के कौनो जिम्मेवारी पदमा रहलक वा ऐना निर्वाचनमा उम्मेद्वारी बन्न इच्छुक मनिन्के घरमा न छाउगोट कायम रहलक पागिलासी एक महिना भित्र अनिवार्य रूपमा न भट्काइपना निर्णय करलबा। चुरे गाउँपालिकामा न बैठक रासोपा कैलाली के जिल्ला समिति के बैठक से टोगिलक एक महिना भित्र के समय अवधि भित्र छाउगोट नै भट्कैना मनिनहन ऐना निर्वाचनमा उम्मेद्वारी के लाग सिफारिश निकर्ना वो पार्टी के कौनो जिम्मेवारी पदमा नै धर्ना स्पष्ट पर्नबा। जिल्ला भ्रमण के क्रममा कैलाली के पहाड़ी पालिका हुकनमा आमहीन 50-55% घरमा न छाउगोट कायम रहलक हो। तराई के विभिन्न पालिका हुकनमा समेत यी कुरीति जीवित रहलक दुखद यथार्थ देखगिल्पा छ। रासपा यी कदम चल्लक हो। महिनावारी के बेला महिला हुकन असुरक्षित गोठवामा बैठ बाध्यपना सपुवा के कटाई प्रतिकूल मौसम विभिन्न किसिम के हिंसा तथा ज्यानै जैनासम्म के जोखिम निम्तैना हुइल्बा। परम्परागत व धर्म के नाउमन असीन अमानवीय कुरूति निरन्तरता देना कौनो व्यवस्था मन स्वीकार निहुना बटुटी पार्टी आफन नेता कार्यकर्ता हन सुधार के शुरूआत कर यी निर्णय लागू कलक जनागिल्बा। खोज खबर ओराइल जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से एक चो कैलाशेश्वर शिव मंदिर में 121 लघु रुद्राभिषेक साधक के मनोकामना पूरा होना विश्वास। भूगोल आवश्यकता के आधार में योजना छनौट करा भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री ओम विक्रम भाटके कहाई। छाउगोट नि भट्कैना नेता कार्यकर्ता चुनाव लड़ नै पैना जिम्मेवारी सेफे हटैना रासोपा लिता आवकला थारू भाषक खोज खबर अत्रह और समाचार 6 बजे खोज खबर सुन सकी आवक खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद दीदी। मई गीता चौधरी थी विदाई टू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।
8: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोका को लागि काठ कहाँ पाउने होला। काठ पनि सुन जस्तो महंगो के गर्ने के नगर्ने
9: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाई। काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
8: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका।
9: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि।
8: अब त म ढुक्क।
10: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
9: मोबाइल नम्बर 98 48 51 43 26 जमरापारी टिकापुर कैलाली।

0: लीजिए।
1: एंसेल पैक किन लीजिए।
2: जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एंसेल ऐप में क्लेम करी।
0: कैश फिर तक ले लीजिए। कैश फिर तक ले लीजिए।
2: एंसेल पैक किन लीजिए। शर्त लागू हुई। एंसेल नेपाल के लग।

0: गहना पाइनुका साथै अर्डर अनुसार गहना सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ।
1: न्यू असम जालपडेवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चौक टिकापुर कैलाली संचालक दुर्बा सुनार।

0: शनिबार काठमाडौँकी वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा।
1: मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपारके तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठिक नै हुइल घाउ खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइती रहल बा।
0: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9860476417।

0: छिटे सर लागू हुई एनसेल नेपाल के लग
1: बीतल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
2: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
3: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
2: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए तो था पाए
2: यूपी भीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
3: भागीरथी मेडिकल टीकापुर में विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना डाक्टर बम बहादुर को क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेंटर टीकापुर में भदौ 13 गते दोस्रो शनिवार का दिन नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत धेरै अनुभवी र सीनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ समस्याहरू मिर्गी रोग मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु लामो समयदेखि टाउको दुख्नु छटपटी लाग्नु जिउ झमझम हुनु जलन हुनु चिन्ता मान्नु जीवनसित निराश हुनु आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु धेरै शंका मान्नु कानमा बोले जस्तो लाग्नु कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु काममा मन नलाग्नु झर्को मान्नु रिसाउनु बिना कारण हाँस्नु मुस्कुराउनु रुनु घर छोडेर भाग्नु यौन इच्छाको कमी हुनु जाँड गाँजा चरेस रक्सी ब्राउन सुगर नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ हाम्रो यहाँ इसीजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको नजिकै टीकापुर टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-5835 र 98-650-40-770 समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार

0: कितना ले ली थे
1: एंसल पैक किन ली थे जहिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले ली थे कैश फिर तक ले ली थे
1: एंसल पैक किन ली थे शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग